प्रगटे नानक राए, सब सिखन को सुख दे जैते भय सहाय। आज बेदियां दी कुल विच

राय जी ने पछाण लिया, ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मेनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदो आए, राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइया मजिया आ दूजे दे खेत विच छड के सारा खलियान खेत खराब कर दिता। एदा हरजाना पर भई तेरा पुत्र है ना नानक। मेहता कालू कहन लगा, ए ता है ही निखट्टू, कोई कम कार नहीं करदा, वेले बैठा रहंदा है। एक काम इस नु करन वास्ते भेजिया सी, ओ भी उजाड़ के आ गया। क्यों नानक इवें क्यों कीता? मेहता कालू ने जदों पुछया ते गुरु नानक सच्चे पातशाह बाल अवस्था विच कहन लगे, पिता जी इदे खेत नू तां कुछ होया ही नहीं, ए इवें आके इत्थे शिकायत करन आ गया है। इदी खेती नू कुछ नहीं होया, इदी खेती तां उसे तरह लहलहा रही है। सत सगत बोलो श्री हरी परी है। ओ कहिंदे नहीं, मैं अपनी अखां नाल वेख के आया, चलो मेरे नाल। ते सारे जदों कठे होके उत्थे पहुंचे, प्यारी सत संगत जी, गुरु नानक दी ऐसी करनी ऐसी वडियाई वरती, ओ जेड़ी खेती सारी उजड़ गई सी, ओ खेती सारी दोबारा लै लहा रही है। कोई कहिंदा नहीं के इत्थे गाइयां मजियां आईयां भी कोई नहीं, उन्हें क्या मैं आप खुर तके हन गाइयां मजियां दे।

खाना ले दिता। आख्या इथे बैठ के हुण दुकान करेगा तां इसदा चित दुकान विच लग जाए। साहब जी दुकान ते बैठ गए, किरियाने दी दुकान है, जो कोई लोड़वंद आउंदा है चोली अगे करदे, गुरु नानक ओदी चोली भर देंदे। एक दो तीन चार पांच जेड़ा आई जाऊ

मोती खाना छोड़ दिता। दौलत खान ने बड़े मिन्नत की थी, आख्या होण नहीं लेना। उथों वे ही नदी ते आए, बाला नाल है। साहब जी ने आख्या, बालिया तू साडे बस्तरां दा ध्यान रख, ते असी वेज

आख्या इस पासे मेरे खेत हन करतारपुर विच मैं उना नू पानी पा रही खेती नू। पंडित कहन लगा कितनी कु दूर है? आख्या कोई 400-500 मील होना इथो। आख्या तुहाडा एक लोटा पाया पानी ओ खेतां तक पहुंच जावेगा। साहब जी कहन लगे जे तेरा पानी सूरज तक पहुंच

कबीर साहब कहते ने सब कुछ छड़ दिता है, तनना भी बुनना भी, हम एक रब का नाम है लिखा हुआ अपने हिरदे ते। कितनी वड़ी गल है, सब कुछ छड़ के मैं हरी का नाम, रब का नाम, हरी दे चरण वसाए हुए हैं।

जग्यासु जीव सारी उम्र छोटे छोटे लाभां नूं वेखदे रहिंदे। भाई बड़ा कुछ कमा के बड़ा कुछ पा के चीज की समझ आंदी है कि रब दे नाम तुल कुछ नहीं। जेड़े मेरे वर्गा कोई गरीब फकीर होवे वो सारी उम्र नस्सा फिरदा दौलत दे मगर, पर जेड़ा बहुत कमाई कर लवे ओनू फिर यह पता लगता है कि सब तो वड्डा जो है रब दा नाम है। कबीर साहब कहंदे हन, होछी मत मेरी जात जुलाहा, हर का नाम लियो मैं लाहा।

परमेश्वर आप हुआ रखवाला, परमेश्वर आप हुआ रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

जन कब हुना हारे। ताल जो जाने पाशा, ताल जो जाने पाशा, ते जन कब हुना हारे। सो कदे ना हारे।

शिवा पर मोहित है सब सरमन दे कब हम न करो शिवा पर मोहित है सब सरमन दे कब हम न करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो न डरो अरसों जब जाए लरो निश्चय कर अपनी जीत करो और सिखा अपने ही मन को लाल चढ़ाओ गुटाओ चढ़ाओ और सिखाओ अपने ही मन को ए लाल

आन को दान न लागत निको, आन को दान न लागत निको, आज भले इन्हीं को दियो, आज भले इन्हीं को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

धन है सब ही इन्हीं जब्त जिते इन्हीं के प्रसाद इन्हीं के प्रसाद सुधान करे अग आग टे इन्हीं के प्रसाद इन्हीं की कृपा फुन काम भरे इन्हीं की कृपा फुन काम परे इन्हीं के प्रसाद को विद्यालय इन्हीं के प्रसाद को विद्यालय इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे इन्हीं की कृपा मिल सके हमें नहीं बहुत बहुत

आप सो जो जाने नीचा सौ गणिए सब ते ऊंचा। अपने आप नू जेड़ा नीवा बना के गरीब बना के रखे वाहगुरु वालों उन्हों दात किन्नी मिलती है एदा प्रमाण भाई गुरदास जी देंदे अपनी बाणी अंदर कहिंदे दाणा होए अनार दा अनार दा दाणा अपने आप नू निम्रता विच उसने अपने वजूद नू निम्रता लिया के मिट्टी च रोलिया इन्ना गरीब बन गया मिट्टी च रुल गया। वाहगुरु ने उसनू दात बख्शी भाग लाए भाई गुरदास साहब की बाणी दाणा होए अनार दा होए धूड़ धूड़ी विच तसे फिर होए बिरख हरियावला हरियावला बिरख बन गया लाल गुलाला फुल विगसे एक बिरख सैस फल फुल फल दे मन अंदर वसे एक दू दाने लख होए एक दू दाने लख होए फुल फल एक दू एक सरसे ज्यों ज्यों लइण तोड़ फल त्यों त्यों फिर फलिए हसे निब चलन गुरु मार्ग दसे निब चलन गुरु मार्ग दसे होए वड़ेवा जग विच वड़ेवे दा बीज उसका प्रमाण देंदे होए भाई गुरदास कहंदे होए वड़ेवा जग विच खे नाल रलाया वड़ेवे दे बीज ने अपना तन मिट्टी च रोलिया की होया होए वड़ेवा जग विच बीजे तन खे नाल रलाया बूटी हो कपाह दी बूटी बन गया टींडे हस हस आप खिड़ाया। इथे ही बस नहीं अगे इम्तिहान होर पै गया दो मिल वेलन वेलिया वेलने विच ही वेलिया गया वड़ेवा दो मिल वेलन वेलिया लू लू कर तुंब तंबाया तिंजन पिंज उड़ाया कर कर गोरी सूत कटाया तन तन खुंब चढ़ाए दे दे दुख तुआए रंगाया फिर कैंची कट्टन कट्टिया फिर सूई धागे जोड़ सवाया लज्जन कज्जन होए कजाया। ए रुमाल बनके गुरु ग्रंथ साहब जी दे सुभायमान हो देखो किड्डा वड्डा भाग गुरसिख दे सीस ते दस्तार बन के सज गया क्यों इस तरह बाबा दीप सिंह ने अपने आप नू साध संगत जी एने निम्रता विच लै गए कहिंदे पुरजा पुरजा कद मरे कब हुन छाके जाता प्रेम खेलन का जिन धरतली गली पैर धरी के फिर दीजे कान जिस

लख जन्म सवार दरगे सच्ची दरगाह जाए सचा पिड़ मल्या सच्ची दरगाह जाए सचा पिड़ मल्या सच्ची दरगाह जाए सचा पिड़ मल्या जेहा चीरी लिखिया तेहे कर्म कमाए तल्ले आए नानक।

थलल निवास जैसे मीर की ना घटे रुच, थलल निवास जैसे मीन की ना घटे रुच, दीपक प्रदास कटे प्रीत ना पतंग की उस सुभास, जैसे त्रिपत ना मध्यप को उड़ते आकाश, आस कटे ना बिहंग की कटाकन को।

क्योंकि मैनू ये यकीन है कि जदों तू मैनू अपना बनावेगा ते मैनू निवाजेगा, मैनू मान बख्शेगा। मैं तेरे दर ते आके तेरे अगे पुकार करदा हां कि कृपा कर मैनू अपना।

मित्र कुटुंब तन पवन मम ए मेरे मित्र मेरा कुटुंब ए तन रहण वास्ते सोने पवन समृद्ध कहंदे ने सगल समग्री ए मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन दौलत रहण वास्ते घर ये सारी जिहड़ी समग्री है कृपा करतास खालसे ने मेरे ते कृपा करके ये सब कुछ मैनू दिता। सत्संग धन है गुरु गोबिंद सिंह महाराज है ने गुरु नानक दा रूप पर जे निम्रता वल जाइए ते कित्थे तक जा पहुंचे ने कि सारा कुछ खालसे ने कृपा करके मैनू दिता है। कवि सुंदरदास जिहड़े आनंदपुर साहब रहा करदे सन ओ कहंदा मैं आनंदपुर साहब रह के देखे है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का दरबार कि जिन्हां राजियां महाराजियां नूं मिलना बड़ा औखा है, जिन्हां राजियां महाराजियां दी एक झलक देखनी बड़ी औखी है, उन्हां राजियां महाराजियां नूं मैं गुरु गोबिंद सिंह दे दरबार ते दरबान बन के पहरेदार बन के खलोते देखे है। ओ गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिदे दर ते वड्डे वड्डे राजे महाराजे आके झुकदे ने, ओ गुरु इतनी निम्रता, इस निम्रता विच आके कह रहे ने कि मेरा कुटुंब मेरे मित्र तन रहण वास्ते घर सब कुछ खालसे ने कृपा